महडगाव अति महसूर वरद विनायकाच तीत एक मंदिर मंदिर लय साध सुद जस कौलारू घर घुमटाचा कळ सोनेरी नक्षी नागा।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं?

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर

0: का
1: महडगाव अति महसूर वरद विनायकाच तीत एक मंदिर मंदिर लई साध सुद जस कौलारू घर घुमटाचा कळ सोनेरी नक्षी नागा

मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है। हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए। कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया।

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम, हमने खाई है कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है पट्टा की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है।